0: When pumps run out, drivers are turned away. Shiv now struggles to make ends meet.
1: ನಾವು ಈ 25 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಾಡಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲೇ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ಆಚೆ ಕಡೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋನ್ ಆಟೋ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಸೇಟು ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 150 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸುತ್ತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಏನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಖಾಲಿ ಸುತ್ತಾಗಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಜೀವನ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಕಾಸು ಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ದುಡ್ದು ಅವತ್ತೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ದುಡಿದ್ರೇ ಕಾಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ ಆಗೋಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಕೊಡಿ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ
0: Industries aren't faring any better. India ranks 12th globally in natural gas consumption, using roughly 2.2 trillion cubic feet. Its disruption is severely felt in Firozabad, a major hub of traditional small-scale manufacturing. The city produces 70% of India's total glass output, earning it the title of the Glass City of India. They use a mix of piped natural gas, PNG, and liquefied petroleum gas, LPG, to fire clay furnaces, both of which are in short supply.
2: करीब 100 साल से यहाँ परिवार में इस बिजनेस का काम हो रहा है और इन चीजों को शुरुआत में जो शुरुआत हुई है ये इसकी फर्नेस जो होती हैं पहले कोयले चलती थी परंतु कोयले चलने के बाद जब ये टीटीजेड एरिया बनाया गया ताजमहल को सेव करने के लिए तो टीटीजेड एरिया बनाया गया इस टीटीजेड एरिया में ताजमहल के सराउंडिंग 70 किलोमीटर कोई भी फ्यूल यूज नहीं होता ग्रीन गैस के अलावा तो 96 में सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड को गैस का प्रोविजन किया जिससे 2000 में ये गैस यहाँ पर आई देखिए जब तक ये बार खत्म नहीं होता तो जब तक गैस का सप्लाई पूरे हिंदुस्तान में नहीं आ सकती क्योंकि जितने ये अपने देश हैं जहाँ लड़ाई चल रही है वहीं से गैस आती है कि क्या सब लोग देख रहे हैं कुछ करते हैं बगैर गैस के हमारी फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी फरोजाबाद में करीब 2 से 8 फैक्ट्रियाँ हैं जो टोटल डिपेंड गैस के ऊपर है लेकिन जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है हिंदुस्तान में जो गैस आती है वो कतर से ईरान इधर से आती है इनके युद्ध शुरू होने से गैस का आना कम हुआ है तो हम लोगों को जो आवंटन था डीसी के पर डे का मिलता था हमको उसका 20% उन्होंने कट लगा दिया है इट मीन्स 20% हमारा प्रोडक्शन कम हो गया 20% लेबर बेकार हो गई
0: गैस शॉर्टेजेस हैव लेड टू आइडल फर्नेसेस अक्रॉस द इंडस्ट्री आउटपुट हैज रिड्यूस्ड बाय नियरली 40% लीविंग मेनी वर्कर्स विदाउट जॉब्स
2: गिलास बैंगल की जो फैक्ट्रियाँ हैं इसमें जो है एक फैक्ट्री में 3 से डेली काम करते हैं पर डे परंतु इसके जो प्रोडक्शन होता है इसके डेकोरेशन होता है उसमें कम से कम 4 गुना एम्प्लॉयमेंट और होता है और एक फैक्ट्री से लगभग 2000 एम्प्लॉयमेंट मिलता है जो कि हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति इतनी कम पैसे में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकती ये सब थोड़ी खासियत यहाँ पर है हमको उम्मीद है कि युद्ध बंद हो जाएगा तो गैस की आपूर्ति फिर से दोबारा शुरू हो जाएगी जिससे पूरा एम्प्लॉयमेंट हम दे सकेंगे और ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि जो गैस पूरा मिल जाए इंडस्ट्री चले एम्प्लॉयमेंट मिले इसमें ही हमारी और देश की तरक्की
0: इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर द एनर्जी स्क्वीज एक्सटेंड्स एवरीवेयर अक्रॉस इंडिया अथॉरिटीज हैव इंट्रोड्यूस्ड एंटी होर्डिंग मेजर्स including a 200-litre cap on diesel purchases at fuel pumps to prevent artificial shortages and price hikes. The crisis underscores India's dependence on fossil fuels, which still meets around 80% of its energy needs.
3: India is the hungriest market for energy, and you name the source of energy and India wants it. India needs it. We consume roughly 5.8 million barrels of oil every day. And bulk of that, roughly 5.2 million barrels, is imported. We also have 700 million Indians who are still living below energy poverty line. The backbone of India's energy security, energy prosperity, that is fossil fuel. India is urbanizing very, very fast. The growth of India, the story of India, is still driven by fossil fuel. What we have witnessed the last 7 to 10 years, the expansion of LPG in a very big way, probably the fastest growing LPG market in the world. And today we have roughly 340 million LPG connections across the country. As part of the government initiative, the government decided that every single household must have access to cooking gas. And so this scheme was heavily subsidized, heavily campaigned by the government. Bulk of this LPG before the Persian Gulf War was coming from countries like Qatar. In the overnight, the country was faced with a very difficult situation. The real challenge today is economic, is the, basically because the prices have gone up. And our economy was not prepared for it. Consumers was not prepared for it. The consumers can feel the heat in terms of both price and also very often the supply.
0: Restaurants, factories and hotels that are facing gas shortages have left a trail of unemployment across the country. Estimates suggest that more than 10 million Indians may lose their jobs temporarily due to gas supply disruptions. Migrant workers in urban centres are left with little choice but to return to their villages. 30-year-old Dolly Davy is one of them. She and her husband have both lost their jobs. They embark on the long journey home to their village in Bihar. According to India's last census held in 2011, the country had 54 million interstate migrants. Thousands of migrant workers have temporarily left major industrial cities amid job losses and rising costs.
4: जब से महंगाई बढ़ा है ना एक दिन भी नहीं भरवाई गैस लक्कर पे बना खा रही किरेदार से लड़ाई कर रहे हैं मकान मालिक लड़ाई कर रहा है चूल्हे पे नहीं बनाने दूंगी फिर हम लोग क्या करेंगे महंगाई बढ़ गई वहां पे काम है स्टेशन पे काम करके खा लेंगे गांव में चूल्हा पे बना सकते हैं अपना मकान है वहां तो नहीं कोई बोलेगा ना यहां तो किराया का मकान क्या बोलता है आदमी
0: As the Indian government searches for alternative sources of natural gas, some Indians have found solutions closer to home by turning waste into biogas.
5: AI made it cheaper for her to build an app. But what's the cost of going without a salary? When your best-known dish barely makes money, this Gen Z is finding new ways to earn. Plus, couples pay them to film weddings on their phones. Can that really be a full-time job? On Money Mind, Wednesday on CNA.
6: China wants more marriages and births, but this push is fueling debate over gender roles.
7: 男主外女主内这种理想一直都没有改变。如果说结婚要让我放弃我现在的生活模式的话，其实我就是真的不太想结。
6: What's behind the growing divide between what Chinese women and men want?
8: 社会上对男性的要求是过高的，对于女生的要求是几乎没有的。但凡站到女性站出来讲话这个点，她就会觉得你是一个女权。
6: Insight Thursday on CNA.

0: 2026. LPG and LNG shipments from the Gulf to India have been disrupted by the blockade of the Strait of Hormuz. The disruption has triggered an energy crunch, with long queues for cooking gas cylinders across the country. But in one rural setting, a quiet energy revolution is underway. Housewives like 32-year-old Mitlesh Yadav are making a transition to renewable energy.
1: जब ये था कि पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे और एलपीजी से तो हम जैसे धुआं होता था परेशानी बनती थी हमें टाइम ज्यादा लगता था तो अब हम इस पे बनाते हैं तो अपने कभी भी कुछ भी काम करते हैं मतलब गैस बंद करी अपना काम कर लिया और चूल्हे का काम ये था कि परमानेंट पहले चूल्हे का ही खत्म करना है गैस की मतलब एलपीजी की ये दिक्कत थी कि कभी सिलेंडर खत्म हो गया तो फिर हमें चूल्हे पे खाना बनाना है अब इस मतलब जब से ये गैस लगी है ना तब से हमें कोई परेशानी नहीं है तब से हम कंटिन्यू इसी पे खाना बनाते हैं टाइम टू टाइम मतलब एलपीजी से तो कम ही लगते हैं एलपीजी से तो जैसे कि एक सिलेंडर हमारा 20 दिन चलता है अब हमें सिलेंडर भरवाने की तो टेंशन है ही नहीं
0: Switching to the biogas system was her husband Arjun Yadav's idea.
2: सुबह को डेली गोबर उठा के इसमें इकट्ठा करके और उसको पानी के द्वारा मिक्स करते हैं घोल के वो उसके बाद इस डाइजेस्टर में जाता इसे हटा देते हैं इस तरह से अपने आप ही डाइजेस्टर में चला जाएगा ये इसका डाइजेस्टर है इसमें जो डाइजेस्ट होता इसमें डाइजेस्ट होने के बाद उसकी मीथेन गैस जो बनती है बायोगैस वो इस पाइप के द्वारा ये इसका गैस का पाइप है आउटपुट जो हमारा गैस इससे हमें ओवरफ्लो होती है ना इसमें गैस ज़्यादा बनती है हमने यूज नहीं करी कभी तो इससे वो ये है सेफ्टी वॉल से बाहर निकल जाती है वो हानिकारक गैस होती है वो यहीं फिल्टर हो जाती है आगे नहीं जाती है जो चूल्हे के बर्तन को काला करती है फिर उसके बाद गैस घर में रसोई में काम आ जाती है
0: The cow dung slurry that comes out as a byproduct from the methane digester provides additional benefits to this farming family.
2: और जो इसकी स्लरी निकलती है वो हमारे खेत में डलती है जिससे जो हमारा यूरिया डाई उसका जो कंजप्शन 25% रह जाता है जो पहले हम 100 केजी लगाते थे उसका 25% ही लगता है यानी कि 25 केजी और अच्छा रिजल्ट है इसका जो स्लरी का यानी कि 75% खाद बचत है और गैस का तो 100% बचत है गैस की तो एक साल से डेढ़ साल में इसकी कीमत रिटर्न हो गई हमें एक से डेढ़ साल में इसकी जो कीमत हमने लगाई थी वो तो रिटर्न हो गई अब तो फायदे ही फायदे का सौदा है अब कोई वो नहीं है
0: Since the 1980s, the Indian government has promoted biogas as a low-cost rural energy source. More than 5 million digester units have been installed across the country, converting farm waste into methane for cooking.
3: Every country who are dependent on the fossil fuels from the outside, they are facing the challenge. The government of India introduced Gobardhan, galvanized bio agro resource dhan policy, promoting small scale, medium scale biogas plant. India has a huge potential. India can generate around 62 million metric ton CBG per annum. They have set a target to install 5,000 CBG project. And as per some current estimate, around 130 or 140 plant has already been set up. We can generate the gas in the village level that can be supplied to fulfill the requirement of our village. We have a huge potential to generate the CBG. So that will create long-term impact to reduce our import bill. It's a sustainable solution. We can also reduce our fossil fuel dependency and we can also improve our air quality by, you know, reducing the burning of this agriculture residue.
0: Known as the food basket of India, the Indian state of Punjab is beset with the problem of stubble burning. Stubbles, or the short leftover stalks of crop plants, such as wheat, rice or corn, remain rooted in the ground after the main grain or harvest is collected. Amongst many farmers, burning them is considered an efficient method to clear their fields for the winter sowing season. Stubble burning is a major contributor to poor air quality across northern India. One study estimates crop residue burning caused 44,000 to 98,000 premature deaths annually in India between 2003 and 2019. What is burned as agricultural waste in Punjab province can also be used as a source of energy. In the city of Sangrur, Pankaj Jain oversees how paddy straw is converted into compressed biogas, or CBG, on an industrial scale.
4: Our core focus is paddy straw. And why paddy straw? Because as of now, paddy straw has no solution. Farmers has no solution. In case we won't take it, then they have to burn it or maybe in situ it. So that's why to avoid stubble burning, our main focus is the paddy straw. But yes, we can use other agriculture residues also, like the wheat straw, we can use the maize straw, we can use the sugarcane straw. The raw biogas which is coming comes into these units. These are the gas purification units. So these are the two columns. In these units, first process is the absorption of CO2 and raw biogas becomes purified. And then there is a further removal of H2S and moisture in this gas purification unit, and the pure biogas or the CBG comes from through this pipeline. After this pipeline, it goes into those compressors where we compress the gas to 250 bars.
0: The Verbio facility is Asia's largest compressed biogas plant. It has reduced 150,000 tons of carbon dioxide emissions by preventing stubble burning across tens of thousands of acres. Inspired by this success, more such plants have been planned across the state.
5: We have kind of set up a blueprint wherein the same concept is ready to be replicated in other parts of Punjab and overall country as well. We generate close to 500 to 600 million tons of agri residue every year. Now, the volume of the residue which is getting burnt is to the tune of anything close to about 100 million tons per year. Now, the 100 million tons can translate into about 10 million tons of bio-CNG. What it means is that with this as a resource, we can meet almost more than 50% of our import demand for CNG. So that is the role bio-CNG could play in the overall energy mix.
0: Farmers like 44-year-old Gurdeep Singh are benefiting from these solutions.
6: Burning the time, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਕਾ ਹਮਾਰੇ ਜਹਾਂ ਵੈਰਪੀਓ ਕਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਵੋ ਉਨਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲਰ ਥੇ ਉਸਸੇ ਹਮਾਰਾ ਪਰਾਲੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮੇਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲਰ ਖਰੀਦ ਲੀਏ ਅਭੀ ਹਮ ਉਸਕੋ ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਕੇ ਕਿਸਾਨੋ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਕੋ ਵਹਾਂ ਉਨਕੋ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਿਸਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾ ਖਰਚਾ ਕਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਦੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
0: ਆਫਟਰ ਦ ਬਾਇਓਗੈਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ The Verbio plant returns the stubble slurry to farmers as fertilizer.
6: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਲਕੇ ਇੱਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਪਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਬਣੇਗੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਊਰਜਾ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
0: As Punjab marches on with biogas, a Bengaluru kitchen has found alternatives to gas shortages.
7: This border is getting busier. Vietnam wants a bigger slice of China's durian market.
8: I'm trying to look for Vietnamese durian, but it's quite difficult to find. Vietnamese growers are stepping up the competition.
9: But it's a soft, crunchy texture to it.
8: But it's not just fruit on the move. People, cultures, and opportunities are flowing both ways too. Who will reap the rewards? Wednesday on CNA.

0: Perched in the scenic hills of Himachal Pradesh lies the historic Sri Naina Devi Temple that was built in the 8th century AD. It's one of India's most revered Hindu shrines, dedicated to the goddess Shakti. Devotees from across India come here to worship, with more than 100,000 visiting on festival days. For generations, pilgrims here have been served free meals. But one aspect of this tradition has changed. It now uses kitchen waste to make biogas, cutting their reliance on expensive LPG cylinders. The temple's biogas digester processes 200 kilograms of food waste every day, producing around 20 kilograms of biogas. The gas is then used in the kitchen to prepare meals for devotees. Food waste is being turned into energy to cook the next meal. Head chef Nand Lal ensures food for the visitors and the waste for the biogas plant doesn't run out.
1: Gas hi aa raha hamara pipe piche se ji. Supply sari bhattiyon ki supply isi pipe se hai. Sab bhattiyon se kali kali bhatti ki supply jo hai isi pipe se aa rahi hai. Ye dopahar ke liye ji. Ghee daal. Ye subah naaste ka chal raha hai. Aloo chane ki sabzi. Aur ek kadi dopahar ke liye sir. Subah se ji sabzi ki taiyari karni hai. Aata goondhna hai, puri taiyar karni hai. ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੋ ਲਗਾਣਾ ਮਾਤਾ ਕੋ 7 ਵਜੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੰਗਰ
0: ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਲੰਚ ਐਂਡ ਡਿਨਰ ਆਰ ਸਰਵਡ ਔਨ ਅ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੀਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ 500 ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਐਟ ਐਨੀ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ
1: वो पक्का एस्टीमेट तो हम बता नहीं सकते हैं श्रद्धालु जितना आते हैं माता के कभी हजार भी आ जाता है कभी 500 भी आएगा कभी 1500 2000 भी हो जाता है ये मतलब खुला काम है कभी 5000 भी आ जाएगा ये तो हमारा श्रद्धालुओं से आता है जी दान का भी आता है जो हमारे को कमी पड़ती है वो हमारे को लेना पड़ता है सरकार से वो
0: द टेंपल्स बायोगैस प्लांट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ धर्मपाल चौधरी who is the chairman of the Sri Naina Devi Temple Trust.
2: The belief and the mission behind this initiative ki actually jab maine yahan join kiya tha to humne dekha ki jo langar ka waste hai wo scientifically dispose of nahi ho pa raha tha aur jisse bahut sari samasya aa rahi thi even jo shradhalu aa rahe the yahan unse durgandh ya smell jo hai wo dekhi ja rahi thi ki wo smell kafi gandi thi और दूसरा इसका वेस्ट का कोई डिस्पोजल सही तरीके से नहीं हो रहा था तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वेस्ट से एनर्जी को बनाया जाए ये हमारा कोल्ड स्टोर है जिसमें हमारी सब्जियां या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं बाहर गर्मी में तो उसको स्टोर किया जाता है पर हमने इस प्रोजेक्ट को एज अ मॉडल प्रोजेक्ट लिया है और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है और हमें प्रतिदिन जो हमारा इस प्रोजेक्ट की जो लागत जो हमारी कैपेसिटी है दैट इज़ कि 200 किलो का जो वेस्ट है उसको एनर्जी में ये कन्वर्ट कर सकता है तो अराउंड 10% ऑफ द जो टोटल वेस्ट ये कैरी कर सकता है उसकी गैस बायोगैस ही बनाता है तो लगभग एक सिलेंडर यानी कि 20 kg की जो वो बायोगैस प्रतिदिन बनती है अगर हम मनी की सेविंग की बात करें तो लगभग एक सिलेंडर की कीमत आज के अगर मार्केट रेट के हिसाब से देखें तो 1000 रुपये बनती है तो लगभग लगभग एक महीने का 3 लाख रुपये के जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेव हो रहा है और साल का मोर देन 35 लाख रुपीज़ हम इससे सेव कर पा रहे हैं तो जो चढ़ावा होता है वो कहीं ना कहीं माता के दरबार में लोगों की श्रद्धा होती है और श्रद्धा को हम वापस श्रद्धालुओं को कैसे बेहतर सुविधाएं दे सकें जब वो दर्शन करने आए तो एक सुगम व्यवस्था बने
0: As one community embraces change, another is preparing the next generation to build on it. Sri Prakash Vidya Niketan is a residential school serving more than 2,500 students from rural communities across southern India. The curriculum includes lessons on the waste-to-wealth philosophy.
3: So, do you all love to see the environment clean?
4: It is important for the students to know and learn and practically act on sustainability because they have to be the role models and they have to understand they are the future generations which are going to conserve the present environmental resources and how to use them wisely. During their daily course, they are learning so many things, but they should also learn that whatever resources are left over, they have to use them carefully and also keep them to the future generations.
0: School children here don't just learn in classrooms. Sustainability has been incorporated into campus life. A cowshed at the campus was initially created to meet the hostel's dairy supply. It was then converted into a self-sustainable biogas plant.
4: So the biogas production involves 8 steps. Initially, in the first step, the everyday, which is a consistent waste from the cattle, is collected. This has been mixed and made it into mixed with water, and it is called as slurry. This is the second step. The slurry is subjected to the digesters, which we have 6 digesters, which are 3 are primary digesters and 3 more are

0: May 2026. The closure of the Strait of Hormuz has caused havoc in parts of Pakistan that have been left in the dark. Chronic power cuts, coupled with rising electricity bills, has spilled into anger on the streets. Today's rally is organized by the Lahore Rickshaw Union. Liquefied natural gas from the Middle East that contributes a fifth of Pakistan's energy mix is disrupted. Coupled with a dramatic surge in summer electricity demand, Pakistanis are facing power cuts on an average of 7 hours per day. When power plants cannot produce electricity to match demand, load shedding or power cuts are implemented by the government to ration supply.
1: Petrol mehanga kar diya gaya, load shedding shuru kar di gayi, bijli aati hai to gas chali jati hai, aur phir is awam pe ke jinki dukane raat 8 baje band kar di jati hain, un logon ko taxes ki yelghar kar di gayi hai, logon ka jeena mahal ho chuka, log is waqt bilkul taiyar hain ke log is hukumat ke khilaf nikle. Mehngi bijli, mehngi bijli, mehngi gas, mehnga petrol.
2: Petrol ki keematon ke andar izafa wapas le, load shedding khatam kare taaki awam ko sahuliyat mile, taaki hum milkar duniya ko ek mazboot paigham de sake. ये लाहौर में आज ये पहला मुजाहरा है तो अगले चंद दिनों के बाद पंजाब के बाकी जिला के अंदर भी इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा और जब तक हम عوام की आवाज और عوام के مطالبے جو نہ پورے زور انداز سے نہیں رکھ پائیں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا.
0: Rising LNG, diesel and furnace oil prices add to the woes. Per unit electricity prices have also shot up by 155% over the last 3 years. Power outages have cost Pakistan's economy more than $4 billion annually. Small and medium enterprises are particularly impacted due to their small profit margins.
3: ये भी रिसीव इससे कह लो गिनती करके
4: ठीक है
3: हैंगिंग लूप नहीं लगाया इसको
4: ठीक है लगवा दो.
5: मेरा नाम सैयद शुएब अली जाफरी है और मेरा एक स्टिचिंग यूनिट है. मैं लोकल क्रीम ब्लॉक मार्केट का और कुछ ब्रांड्स हैं उनका साथ काम करता हूं.
3: यार जरा इसको सही तरह सेट कर लिया था आप प्लीज
4: पानी की जगह रूम
0: Power cuts have resulted in an average output loss of 25% across Pakistan, particularly affecting industries like textiles and machinery. This equates to roughly 2.5% of the country's GDP.
5: देखें बिजली तो हमें ना होने के बराबर चाहिए होती है लेकिन अगर बिजली आएगी नहीं तो तब भी हमारा काम बिल्कुल सफल होगा ना. चलें ये काम आप लाइट पे डालते ही नहीं हैं हम पैटर्न बना देते हैं. अब जब उसकी कटिंग करनी है तो उसके लिए हमें लाइट चाहिए कटिंग के लिए लाइट चाहिए. उसके बाद जब वो कटिंग हो जाएगी फिर जितना भी काम है उसके बाद सारा लाइट का काम। लोड शेडिंग की वजह से ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो आप एक वीक दो वीक ऊपर चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें 25% पेनल्टी पड़ती है, 20% पेनल्टी पड़ती है, और जितने भी हमारे पास वर्कर्स हैं उनका घर जो सा है वो उस हिसाब से नहीं चलता। एक वर्कर है, उसने यहाँ पर तीन मैक्सिमम 1,000 या 2,000 रुपये का काम करना, ठीक है, अगर लाइट ही नहीं होगी तो वो 1,000 रुपये लेके जाएगा।
3: देखिए हर चीज़ पैसे पे नहीं आप डिपेंड करते, आप का इमेज का नुकसान हो, पार्टीज आपको दोबारा काम नहीं देती। देखिए पार्टीज को काम चाहिए, पार्टी उसी को काम देगी जिसके पास ये सारी फैसिलिटेटेड चीज़ें होंगी ना।
0: Countrywide power shortfall has reached 4,500 megawatts, enough power to light up 4 million homes.
6: In the past 1 month, there have been about 2 weeks

0: that because of lack of LNG import and disruptions coming in from the Strait of Hormuz, and also lower hydel generation due to lesser requirement of the provinces to take water out of the dams. Because our hydel power, the first priority is irrigation. So however much irrigation water is required from these dams, that's how much hydel power is produced. So we had a situation in the last 2 weeks of April where hydel was low, there wasn't any LNG, and so there were disruptions. And this is going to also impact the cost of energy for this particular month and until the US-Iran war issue is resolved.
1: An unreliable power grid has forced a people-driven revolution. The Hall Road Market in Lahore is the commercial heart of Pakistan's solar boom. Since 2017, Pakistan has imported 58 gigawatts worth of solar panels, making Pakistan one of the world's biggest importers.
2: Government ki price itni zyada high hai ki har banda chahe wo uske paas ek plate ki paise ho na to wo ek plate hi buy karne aa jata hai. Lahore ke andar takriban 4 se 5 zone hai jahan solar bikra hai. Jaise aap Halol le lein, aap Johor Town le lein, aap DHA chale jayein, आप ठोकर वाली साइड पे चले जाएं, डिफरेंट जोन बन गए हैं, हर तरफ अब सोलर बिक रहा है। हालांकि पाकिस्तान में चीजों के रेट बढ़े हैं, महंगाई ज्यादा हुई है, चीजों के रेट बढ़ने चाहिए थे, सोलर महंगा होना चाहिए था, लेकिन सोलर सस्ता हुआ है, वो इसलिए क्योंकि नई से नई चीज आ रही है। नेता
3: 12 ਲੱਗੀ ਆ 8 ਹੋਰ ਪਾਣੀ
4: 12 ਲੱਗੀ ਆ 6 ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ
3: ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਟਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓਗੇ
4: ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣ ਗਏ ਆ ਲੱਗ ਗਏ ਬਣ
5: ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ
4: ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
3: 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਲਬ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਹੁਣ ਸੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰੰਟ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਵੇ ਤੋਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
2: जो सोलर है ना ये 100% इंपोर्टेड आइटम है प्लेट्स इन्वर्टर लिथियम बैटरी 100% चाइना के इंपोर्ट की जाती है अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी उनको एजुकेट किया जाए या थोड़ा सा उनकी तलीम या थोड़ा सा उनको समझाया जाए या अगर फौरन आप ट्रेनिंग दें उन्हें तो वो अच्छा कर सकते हैं काम उसके अंदर हाइब्रिड भी बना सकते हैं एज अ बिजनेस मैन देखा जाए तो सोलर प्रॉफिटेबल चीज़ है सोलर अगर प्रॉफिटेबल ना होता तो जगह जगह शॉप्स नहीं बनती और सोलर की वजह से मेरे ख्याल से लोगों के पास काफी ज्यादा इनकम आई है और काफी फायदा हुआ है लोगों को
1: As Pakistan's population grows, electricity demand has risen by 21% since 2024. That additional demand has been met entirely by solar power. Rising solar demand has also created new economic opportunities. With green jobs expected to continue growing through 2030.
6: Assalamu
7: alaikum. इस सोलर रश को लेके कुछ ऐसी चीजें हैं या कुछ ऐसे सक्सेस इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिनसे दूसरे ममालिक स्पेशली जो ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सीख सकते हैं
8: Solar panels did not just deliver cheap electricity to the country. They helped mobilize 17 to 18 billion US dollars of investments, and that too without any kind of, you know, support from the financial market. And at the same time, the solar sector helped create 500,000 jobs, and it was happening around the time when nothing else was really working in the country, and then the economy was in a really bad shape.

0: तो अगर उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाए तो टेक्नोलॉजी डीफेम हो सकती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमने उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमारा प्लान ये है कि हमने इसको जो है वो मैंडेटरी लिस्ट ऑफ आइटम्स में जिनकी हमने क्वालिटी कंट्रोल करनी है हमारे रेगुलेटर ने, उसके अंदर हमने इसको शामिल करना है। और फिर जो एक उनकी स्कीम है फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसिंग स्कीम, उसके अंदर ये होता है कि जो रेगुलेटर है उसका इंस्पेक्टर जाता है मैन्युफैक्चरर की फैसिलिटी को विज़िट करता है, वहाँ से रैंडम सैंपल पिक करता है, उन रैंडम सैंपल्स को जो है वो हमारे पास वो लैब में भेजेगा, हम उसके ऊपर कोई 3 months लॉन्ग जो है वो रिग्रस टेस्टिंग करेंगे एज पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स।
1: Operating under the Pakistan Standards and Quality Control Authority, every imported consignment of solar panels undergoes rigorous testing. Today, one panel is undergoing a wet test.
0: Standard हमें recommend करता है कि आप इस चीज को भी test करें और ensure करें कि जब बारिश हो रही है panel wet है तो under wet conditions ऐसा तो नहीं है कि जो इंटरनल इसका जो करंट है वो आउटर फ्रेम तक उसकी एक्सेस हो, शॉर्ट हो जाए, और जो इसको यूज़र है कोई इसको हाथ लगाता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का अंदेशा तो नहीं है, कि हम इसको पूरा डिप करके पानी के अंदर और फिर जो है वो इसको देखते हैं कि एक कनेक्शन हमने सर्किट से लिया हुआ है इसके इंटरनल सर्किट से, उसको पे करंट अप्लाई किया हुआ है, और दूसरा कनेक्शन हमने इसके आउटर फ्रेम से लिया है और पानी से लिया है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो अंडर वेट कंडीशंस बाहर तो नहीं आ रही है।
1: Pakistan's extreme climate puts solar technology to the test. From extreme heat to intense monsoons and windstorms, rigorous stress testing ensures solar panels can withstand these conditions and perform reliably.
0: ये हमारी जो मशीन है इसके अंदर बेसिकली हम सिमुलेट करते हैं कि अगर पैनल हमारा जो है वो फील्ड के अंदर लगा हुआ है, माउंटेड है, और जालाबारी है, हेल स्टॉर्म है, तो ऊपर जो आइस बॉल्स फॉल कर रहे हैं इसके ऊपर उनको सस्टेन करने की कि ये ब्रेक ना हो इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, तो हम उसको सिमुलेट करने के लिए हमने जो हमारी जो लिटरेचर बताता है कि अप टू 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ भी आइस बॉल जो है वो इसको हिट कर सकता है। और ये मशीन जो है ये पूरे पैनल के ऊपर जो रिकमेंडेड एरियाज़ हैं हम प्रोग्राम बना देंगे और उन तमाम एरियाज़ के ऊपर जाके ये उस सेट वेलोसिटी के साथ हिट करेगा और हम देखेंगे कि इसने सस्टेन किया है कि नहीं किया। और इसके बेसिकली प्री और आफ्टर के जो है वो टेस्ट होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये टेस्ट इसने पास किया कि फेल किया।
1: Improved quality and wider adoption are transforming the lives of vulnerable communities across the country.
2: On Asia Tonight, day two of UN-backed proceedings giving Cambodia and Thailand their chance to speak and resolve decades of dispute at sea. Plus smoke from Indonesia sending air in both Singapore and Malaysia into the unhealthy range. 8 p.m. Singapore, Hong Kong time.
3: This week on Singapore Hour. Planning a trip to Singapore? Step into these heritage hotels for a stay like no other.
4: Like I stepped into 100 years ago.
5: Quite cool, huh?
3: And stop over at this Insta-worthy neighborhood where tradition thrives and subcultures find their stage.
6: Kampung Glam represents a very different side that you don't really get to experience in Singapore.
3: Your Insider's Guide on Singapore Hour, Friday on CNA.
7: They're among Borneo's most iconic inhabitants, but forest fires and choking regional haze are putting orangutans under growing strain. How are these endangered primates coping with the extreme conditions? Find out more on your next Asia First.
8: CNA 938, news you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938, news you can trust.
9: Control. Now give me your handphone. Give me your handphone. Come.
10: Some acts of love last a lifetime. Caring is one of them. Stories of sacrifice, devotion, and unwavering love.
5: 你不能够动, 我就是你的手和脚。
11: 在他有生以年, 我孝顺他了, 我足够了。
10: An ode to those who care.
12: 谢谢你们爱我。
13: I love mommy.
10: Watch By Your Side on demand at cna.asia.

0: least, that contributes a fifth of Pakistan's energy mix, is disrupted. Coupled with a dramatic surge in summer electricity demand, Pakistanis are facing power cuts on an average of 7 hours per day. When power plants cannot produce electricity to match demand, load shedding or power cuts are implemented by the government to ration supply.
1: Petrol mehanga kar diya gaya, load shedding shuru kar di gayi, bijli aati hai to gas chali jati hai, aur phir is awam pe ke jinki dukane रात 8 बजे बंद कर दी जाती हैं, उन लोगों को टैक्सेस की यलगार कर दी गई है, लोगों का जीना महाल हो चुका, लोग इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं कि लोग इस हकूमत के खिलाफ निकले। महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा पेट्रोल,
2: पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा वापस लें, लोड शेडिंग खत्म करें ताकि अवाम को सहूलियत मिले, ताकि हम मिलकर दुनिया को एक मजबूत पैगाम दे सकें। ये लाहौर में आज ये पहला मुजाहरा है, तो अगले चंद दिनों के बाद पंजाब के बाकी ज़िला के अंदर भी इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा, और जब तक हम अवाम की आवाज़ और अवाम के मुतालबे जो ना पूरे ज़ोर अंदाज से नहीं रख पाएंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा।
0: Rising LNG, diesel and furnace oil prices add to the woes. Per unit electricity prices have also shot up by 155% over the last 3 years. Power outages have cost Pakistan's economy more than $4 billion annually. Small and medium enterprises are particularly impacted due to their small profit margins.
3: इसके कमेंट्स वगैरह देखे ना, ये भी रिसीव इससे कर लो गिनती करके,
4: ठीक है।
3: हैंगिंग लूप नहीं लगाया इसको,
4: लगवा दो।
5: मेरा नाम सैयद शुएब अली जाफरी है और मेरा एक स्टिचिंग यूनिट है। मैं लोकल क्रीम ब्लॉक मार्केट का और कुछ ब्रांड्स हैं उनका साथ काम करता हूँ।
3: यार इसको सही तरह सेट कर लिया था आपने, पानी पानी सुनाओ।
4: जी सर,
3: कल दे रहे सो
4: सर्टी है, लोड शेडिंग वजह ना मेरे 3 घंटे वैसे सुबह से ज़ाया हो गए ना, लोड शेडिंग वजह ना लेट हो गया काम, लोड शेडिंग का बड़ा मसला पे है।
3: ये 3 घंटों में ना ये काम जो आधे घंटे काम 3 घंटों में मेरा हो रहा।
4: जी मेरी गल सुनो, कोई इजाफी टाइम ला लो, पार्टी ने तो गल नहीं सुनी।
0: Power cuts have resulted in an average output loss of 25% across Pakistan, particularly affecting industries like textiles and machinery. This equates to roughly 2.5% of the country's GDP.
5: देखें, बिजली तो हमें ना होने के बराबर चाहिए होती है, लेकिन अगर बिजली आएगी नहीं तो तब भी हमारा काम बिल्कुल सफल होगा ना। चलें, ये काम आप लाइट पे डालते ही नहीं हैं, हम पैटर्न बना लेते हैं। अब जब उसकी कटिंग करनी है तो उसके लिए हमें लाइट चाहिए, कटिंग के लिए लाइट चाहिए। उसके बाद जब वो कटिंग हो जाएगी, फिर जितना भी काम है उसके बाद सारा लाइट का काम। लोड शेडिंग की वजह से ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो आप 1 वीक 2 वीक ऊपर चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें 25% पेनल्टी पड़ती है, 20% पेनल्टी पड़ती है, और जितने भी हमारे पास वर्कर्स हैं उनका घर जो उनसे है वो उस हिसाब से नहीं चलता। एक वर्कर है, उसने यहाँ पर मैक्सिमम 1000 या 2000 रुपये का काम करना, ठीक है। अगर लाइट ही नहीं होगी तो वो 1000 रुपये लेके जाएगा।
4: देखिए, हर चीज़ पैसे पे नहीं आप डिपेंड करते, आप का इमेज का नुकसान हो, पार्टीज आपको दोबारा काम नहीं देती। देखिए, पार्टीज को काम चाहिए, पार्टी उसी को काम देगी जिसके पास ये सारी फैसिलिटेटेड चीजें होंगी ना।
0: कंट्री वाइड पावर शॉर्टफॉल हैज रीच्ड 4500 मेगावाट्स, एनफ पावर टू लाइट अप 4 मिलियन होम्स।

0: in the past 1 month, there have been about 2 weeks because of lack of LNG import and disruptions coming in from the Strait of Hormuz, and also lower hydro generation due to lesser requirement of the provinces to take water out of the dams. Because our hydro power, the first priority is irrigation. So however much irrigation water is required from these dams, that's how much hydro power is produced. So we had a situation in the last 2 weeks of April where hydro was low, there wasn't any LNG, and so there were disruptions. And this is going to also impact the cost of energy for this particular month and until the US-Iran war issue is resolved.
1: An unreliable power grid has forced a people-driven revolution. The Hall Road Market in Lahore is the commercial heart of Pakistan's solar boom. Since 2017, Pakistan has imported 58 gigawatts worth of solar panels, making Pakistan one of the world's biggest importers.
2: Government ki price itni zyada high hai ki har banda chahe wo uske paas ek plate ki paise ho na to wo ek plate hi buy karne aa jata. Lahore ke andar takriban 4 se 5 zone hai jahan solar bikra hai. Jaise aap Halol le lein, aap Johor Town le lein, aap DHA chale jayein, आप ठोकर वाली साइड पे चले जाएं, डिफरेंट जोन बन गए हैं, हर तरफ अब सोलर बिक रहा है. हालांकि पाकिस्तान में चीज़ों के रेट बढ़े हैं, महंगाई ज़्यादा हुई है. चीज़ों के रेट बढ़ने चाहिए थे, सोलर महंगा होना चाहिए था, लेकिन सोलर सस्ता हुआ है. वो इसलिए क्योंकि नई से नई चीज़ आ रही है.
3: 18 प्लेटा 650
4: लगी है ना?
3: हाँ जी,
4: 12 ਲੱਗੀ ਆ, 8 ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਆ.
3: 12 ਲੱਗੀ ਆ, 6 ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ.
4: ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਟਾਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰ. ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓਗੇ?
3: ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣ ਗਏ, ਲੱਗ ਗਏ
4: ਬਣ ਗਏ.
5: ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਹੈ.
3: ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ.
4: 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਲਬ ਸੜ ਜਾਂਦਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ, ਹੁਣ ਸੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਕਿਉਂ? ਕਰੰਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ. ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ. ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ.
2: जो सोलर है ना, ये 100% इम्पोर्टेड आइटम है. प्लेट्स, इन्वर्टर, लिथियम बैटरी 100% चाइना के इम्पोर्ट की जाती है. अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी उनको एजुकेट किया जाए, या थोड़ा सा उनकी तलीम, या थोड़ा सा उनको समझाया जाए, या अगर फौरन आप ट्रेनिंग दें उन्हें, तो वो अच्छा कर सकते हैं काम. उसके अंदर हाइब्रिड भी बना सकते हैं. एज अ बिजनेस मैन देखा जाए तो सोलर प्रॉफिटेबल चीज़ है. सोलर अगर प्रॉफिटेबल ना होता तो जगह जगह शॉप्स नहीं बनती. और सोलर की वजह से मेरे ख्याल से लोगों के पास काफी ज्यादा इनकम आई है और काफी फायदा हुआ है लोगों को.
1: As Pakistan's population grows, electricity demand has risen by 21% since 2024. That additional demand has been met entirely by solar power. Rising solar demand has also created new economic opportunities, with green jobs expected to continue growing through 2030.
6: Assalamu
7: alaikum. Kaise hain aap? Is solar rush ko leke kuch aisi cheeze hain ya kuch aise success ingredients hain jo jinse dusre mumalik, especially jo global south mein developing countries hain, wo seekh sakte hain?
8: Solar panels did not just deliver cheap electricity to the country. They helped mobilize 17 to 18 billion US dollars of investments, and that too without any kind of, you know, support from the financial market. And at the same time, the solar sector helped create 500,000 jobs, and it was happening around the time when nothing else was really working in the country, and then the economy was in a really bad shape.
9: Solar now is the cheapest form of electricity, and people who cannot afford any other

0: Pakistan's solar revolution is no longer confined to homes and villages. It is now transforming the country's industries. A 394-kilowatt solar system now powers the Khawaja Flour and General Mills factory in Hassan Abdal. In a country where high energy costs and frequent power cuts challenge businesses every day, this factory owner has become almost energy independent.
1: ये सोलर सिस्टम मेन जो वायर इसके पैनल लगे हुए हैं ना वो वहां से इसकी सारी वायर जा रही है इस ये फिर आगे से जो है ना ये सिस्टम सारा ये इन्वर्टर लगे हुए हैं ठीक है जी ये इनमें सारी ये बिजली जो है इस इनमें जाती है फिर ये आगे इस वक्त बिल जो है ना वो चल रही है और सारी बिजली जो है तकरीबन इस वक्त 300 किलोवाट सोलर दे रहा है और बाकी जो है ना 100 किलोवाट जो हम वापस दे
0: The mill has significantly lower operational expenses than its competitors.
2: ये जब 2000 में मैंने मिल चलाई उस वक्त भी बिजली की लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम था और बिजली महंगी भी थी लेकिन बिल जो हमारा 20 25 30 लाख आता था वो कभी आधा हो गया कभी जीरो हो गया एक बचत इसमें काफी हुई है एक तो हमारा बिजली का बिल तकरीबन जीरो हो गया और जैसे कि आपको पता है कि बिजली बहुत महंगी भी हो गई है तो इस सोलर की वजह से हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने में आसानी हो रही है क्योंकि उसका जो ओवरऑल जो हमारा एक्सपेंस है वो कम हो गया है तो सोलर ही है जो इस इंडस्ट्री को बचाएगा इंडस्ट्री के लिए ये एक हिसाब से ब्लड का जो है वो दर्जा रखता है कि जिस तरह जिस्म के लिए ब्लड हमारा ज़रूरी है या सांस लेना ज़रूरी है या सोलर भी इस वक्त जो है वो एक सांस लेने वाली बात है इससे इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी और लोग जो है इसमें और भी आ रहे हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है
0: Decade, Pakistan has built a solar industry that is expanding rapidly. Today, more than 200 solar panel, inverter and battery manufacturers from all over Pakistan have descended in Lahore to launch new products.
3: उसकी सर सीएनएफ कराची रेट दे रहा है $23,000 कंबाइन हमारा कंपैक्ट यूनिट है ऑल वन में ही है
4: लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है यार
0: The solar boom was fueled by an influx of low-cost solar panels from China. It's helped save billions in expensive fossil fuel imports.
4: In Pakistan, usually people go for cost, which should not be the case in solar panel, inverter or batteries, because these equipments give you energy backup for a longer period. Quality should be the first and foremost priority. For any customer who is going for solar solution. We have installed around 51 gigawatt in Pakistan and the potential is 2800 gigawatt. If we install 100 gigawatt, right, 10 to 12 billion dollar saving. We are wasting so much money in electricity bills, agriculture and industry. So just imagine how can we save so much from energy and we can balance our trade deficit. The more cost effective it is, the more competitive we are. The saving the individual do, it can be invested in kids' education, health and food. It will reduce carbon emission, bring Pakistan out of debt and it will result in prosperous Pakistan.
0: Private rooftop solar production is now Pakistan's single largest source of electricity, accounting for more than 25% of total production in 2025, ahead of gas, coal, hydro, and nuclear.
4: It was a perfect storm. There were so many variables which actually lead to this revolution. Everybody was interested to import solar equipment. The prices were collapsed in China, so that actually gave an opportunity to the investors. So all the investors jumped in to gain that profit. people had the buying power. In last 5 to 8 years, we imported around $22 billion solar equipment. So that's not by government, that's by us people. It's a people-driven revolution. So all these things combinedly resulted this revolution.
0: The Pakistan government is now increasing quality controls by establishing the Pakistan Korea Testing Laboratory, the first state-of-the-art facility for testing imported solar panels in Pakistan.
5: On average, 17,000 megawatt jo hai, wo import ho rahe hain solar panels each year. So when there is such a bulk quantity ke andar ek cheez aa rahi hai, to agar uski quality compromise ho jaye, to technology defame ho sakti hai, aur uske consequences bahut zyada ho sakte hain. So humne uski quality ko ensure karne ke liye, hamara plan ye hai ki humne isko jo hai, wo mandatory list of items mein jinki humne quality control karni hai hamare regulator ne, uske andar humne isko shamil karna hai, aur phir jo ek unki scheme hai, foreign manufacturing licensing scheme. उसके अंदर ये होता है कि जो रेगुलेटर है उसका इंस्पेक्टर जाता है मैन्युफैक्चरर की फैसिलिटी को विजिट करता है वहां से रैंडम सैंपल पिक करता है उन रैंडम सैंपल्स को जो है वो हमारे पास वो लैब में भेजेगा हम उसके ऊपर कोई 3 मंथ्स लॉन्ग जो है वो रिग्रस टेस्टिंग करेंगे एज पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स
0: ऑपरेटिंग अंडर द पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी एवरी इंपोर्टेड कंसाइनमेंट ऑफ सोलर पैनल्स अंडरगोस रिग्रस टेस्टिंग टुडे One panel is undergoing a wet test.
5: Standard हमें recommend करता है कि आप इस चीज को भी test करें और ensure करें कि जब बारिश हो रही है panel wet है तो under wet conditions ऐसा तो नहीं है कि जो internal इसका जो current है वो outer frame तक उसकी access हो short हो जाए और जो इसको user है कोई इसको हाथ लगाता है उसको electric shock लगने का अंदेशा तो नहीं है कि हम इसको पूरा डिप करके पानी के अंदर और फिर जो है वो इसको देखते हैं कि एक कनेक्शन हमने सर्किट से लिया हुआ है इसके इंटरनल सर्किट से उसको पे करंट अप्लाई किया हुआ है और दूसरा कनेक्शन हमने इसके आउटर फ्रेम से लिया है और पानी से लिया है तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो अंडर वेट कंडीशंस बाहर तो नहीं आ रही है
0: पाकिस्तान्स एक्सट्रीम क्लाइमेट पुट सोलर टेक्नोलॉजी टू द टेस्ट फ्रॉम एक्सट्रीम हीट to intense monsoons and windstorms. Rigorous stress testing ensures solar panels can withstand these conditions and perform reliably.
5: ये हमारी जो मशीन है इसके अंदर बेसिकली हम सिमुलेट करते हैं कि अगर पैनल हमारा जो है वो फील्ड के अंदर लगा हुआ है माउंटेड है और ज्वालाबारी है हेल स्टॉर्म है तो ऊपर जो आइस बॉल्स फॉल कर रहे हैं इसके ऊपर उनको सस्टेन करने की कि ये ब्रेक ना हो इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है तो हम उसको सिमुलेट करने के लिए हमने जो हमारी जो लिटरेचर बताता है कि अप टू 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ भी आइस बॉल जो है वो इसको हिट कर सकता है और ये मशीन जो है ये पूरे पैनल के ऊपर जो रिकमेंडेड एरियाज हैं हम प्रोग्राम बना देंगे और उन तमाम एरियाज के ऊपर जाके ये उस सेट वेलोसिटी के साथ हिट करेगा और हम देखेंगे कि इसने सस्टेन किया है कि नहीं किया और इसके बेसिकली प्री और आफ्टर के जो है वो टेस्ट होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये टेस्ट इसने पास किया कि फेल किया
0: इंप्रूव्ड क्वालिटी एंड वाइडर अडॉप्शन आर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री
6: Saturday on Japan Hour, getting to know beautiful Japan takes you on a pilgrimage of horses, hopes and heritage. Meet the sacred horse of Ese Grand Shrine. Horses that carry wishes to the gods. And the hardy Kantachimi horses, where every hoof print tells a story. Japan Hour, Saturday on CNA.
7: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. IHI. Japan, Takashimaya. Visit our Mid-Autumn Fair, 20th August to 25th September.
8: Talking Point has been granted rare access inside Singapore's blood processing and storage facility.
9: Oh, wow. I'm here to find out why our blood donation system could be coming under increasing pressure.
10: We project that there'll be a shortage in 7 years.
9: What happens if stocks continue to decline? Who would get priority over the blood?
11: How close is Singapore to a blood supply crisis? Talking Point, Sunday on CNA.
12: Give me your handphone. Give me your handphone. Come.
13: 他有 seizure 一天100多次.
14: 为什么是我们呢?
15: Some acts of love last a lifetime. Caring is one of them.
16: 14年了嘛, 我很珍惜跟他在一起的每一天.
17: 无论怎么样, 我一直都会在你身边.
15: Stories of sacrifice, devotion, and unwavering love.
18: 你不能够动, 我就是你的手和脚。
19: 在他有生以年, 我孝顺他了, 我足够了。
15: An ode to those who care.
20: 谢谢你们爱我。
21: I love mommy.
15: Watch By Your Side on demand at cna.asia.

0: Over the past 10 years, soaring electricity prices and frequent blackouts in Pakistan triggered a rapid solar boom, with households and businesses installing panels to cut costs. Solar's share of the energy mix rose sharply as tens of thousands of new connections were added annually. To fight worsening power shortages, the government introduced a net metering policy in 2015. It allowed consumers to sell excess solar electricity to the national grid to reduce outages. In return, solar power users like Saeed Mustafa earn credits to offset their bills.
1: Yeah. सोलर पैनल मेरे 10 केवी किलोवाट के हैं और इसमें टोटल 18 पैनल हैं और एक पैनल जो है वो 580 वाट का है इट कॉस्ट मी अराउंड 1 मिलियन रुपीस एंड उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें लाइट सही जनरेट कर रही है अच्छी बिजली जनरेट कर रही है और हम लोग के लिए रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा है
0: Saeed is now producing more electricity than his household needs.
1: ये इसमें मई के मंथ की ये फर्स्ट मई की जो हमने यूनिट जनरेट किए हैं मेरे सोलर ने वो 59.9 यूनिट्स जनरेट किए हैं एक दिन के अंदर ये सेकंड मई के अभी चल रहे हैं 24.7 हो चुके हैं अब तक तो ये सारे एक्सपोर्ट होते हैं नेशनल ग्रिड में और फिर हमारी जो कंजम्पशन होती है वो उसमें से माइनस करके हमें क्रेडिट दे देते हैं जितना हमने ज़्यादा उनको भेजा It's a conventional solar system where we generate energy and export to a national grid. And how much consume, that amount is deducted from the, we export the electricity to the national grid. So presently my bill is in credit now. Very handsome amount of credit in my electricity bill. So obviously it suits me well and I'm enjoying it. I think one who can afford this expenses, he must go for this solar panel because electricity is very costly. Day by day, they are increasing the charges of electricity.
2: वहाँ पर लाइट्स का बिल्कुल नहीं आइडिया होता इवन पूरा पूरा दिन भी लाइट्स जाती है
3: चाहिए कि उसकी अगर प्लानिंग कम्युनिकेशन का
0: Pakistan relies heavily on imported fossil fuels, much of which passes through the Strait of Hormuz. Its solar boom is reducing that dependence and exposure to global energy shocks.
4: हमारा मोहतात अंदाजा ये लग चुकी ही है और हमारा मोहतात अंदाजा है कि अगले 10 साल के अंदर तकरीबन 8 से 10 हजार मेगावाट और सिर्फ नेट मीटरिंग के ऊपर लगेगी